डेवलप में लगती कना सांतल सामग्री उन्नयन लगी एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बाजार मुखी और सांतल को बिना टेक्नोलॉजी व्यवहार करते सदा चाष ज्ञान डेवलपमेंट रे अडी लगती मेना नहा जुग रे जनसंख्या बढ़ती कना को नते चाष हासा दिन दिन ते कम हिजू कना जार फल चिकेते कम जायगा रे बेसी फलन जामुआ ओना लगी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दरकार प्रॉब्लम लेकाते नेलोग कना भिन्न भिन्न टोटारे संदार आतोखन बाजार संगीन खातिर बाजारे इदिकते रखरिंग अरबांकन ट्रांसपोर्ट रिया उपयुक्त व्यवस्था बांग खातिर अनियमित दा जपूद से इरिगेशन सिस्टम रिया डेवलपमेंट बांग खातिर चास आसा रिया गुनागुन बांग बढ़ाए खातिर आधुनिक प्रजुक्ति रिया व्यवहार बांग बढ़ाए खातिर अब संदार चाषी को फलन रिया सठिक दाम से बेसी फलन बांग को आर्जाव दड़ा ओना लेकिते चासबास रे डेवलपमेंट लगती कना नो डेवलपमेंट तलाते बढ़ाए हासा रेना गुनागुन से हासा परीक्षा करते बढ़ाए जमुआ ओका लेकान न्यूट्रिएंट रेया घाटती मेना से मत व्यवस्था हाथ आगते चास लेकान बढ़ती फलन से आय हुआ दसा लेकाते इरिगेशन सिस्टम डेवलप लगती मेना जेलेका ट्रेडिशनली पहिल लेका नाला माध्यम ते दा बांग इदी करते जदि पाइप लाइन माध्यम ते सरासरी चास जमी रे दा इदी लेखान दा रेना अपचय समय आर खरच कम गानोआ चासबास रे संताल जुवन को आर चासबास रे भविष्य चासबास रे संतर जुवन को सेलेट लेकिन चासबास रे मिल लाभजनक पैसा और आधुनिक हुई लेकाना संतर सांतर चास आबाद रे आगाम लहांती जुवन को दे मिल मारांग मानव संपद कना को सदाय कोन चास अगुआकान ट्रेडिशनल से देशी पद्धति ते भांग चास कतेन नहा जुग रे टेक्नोलॉजी व्यवहार तलाते चास लेकाना ओनाते चास कमी रे जोपड़ा से शुद्ध जीविका अर्जन लगे दुबांग सीमाबद्ध ताहे कतेन बर संतर जुवन को चास कमी रे सेलर कते नवा नवा टेक्नोलॉजी व्यवहार माध्यम ते बढ़ती फलन से लाभजनक चास होय दड़िया संतर जुवन को चास कमी रे सेलर लगे आयमा लेकाना एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एम रे व्यवस्था मेना सहज शर्त ते ओका लगते कृषि ऋण को न्याम ओना ना सुष्ट व्यवस्था नवा नवा टेक्नोलॉजी रे व्यवहार छड़ा होचो ओना साथे बाजार साव नपाय जोगाजोग व्यवस्था बिना होय लगकना नहा जुग रे एग्रीकल्चर ड्रोन आर जीस मेन द जियोग्राफिक इनफॉर्मेशन सिस्टम रे व्यवहार बढ़ती इदी कना से ड्रोन रे इम्पोर्टेंस बढ़ती चला कना ट्रेंड सांताल जुवन से चासी ड्रोन आर जीआईएस माध्यम ते जमी रे मानचित्र बिना दाड़े आए ओना साथे बड़ाए दाड़े आए फसल रे अवस्था जमी रे ओकाठन तिजु को लगाओ कना से रोग होय कना पूरे माटे रान बांग एम कते स्पेसिफिक ओना जायगा रे रान एम गानो ड्रोन माध्यम ते जीएस माध्यम ते जल संपद रे खबर खबर बड़ाय जामुआ आरो आयमा लेकना तथ्य ड्रोन आर जीएस माध्यम ते बड़ाय जामुआ ना जुग रे मोबाइल आर डिजिटल चासबास नहा जुग रे प्राय जतो ठिन के मोबाइल फोन से स्मार्टफोन मेना गया नवा स्मार्टफोन चास कमी रे जपड़ाव गानोआ जुवन को फोन माध्यम ते चाषी को आभारेना तथ्य विभिन्न फसल रे इत बचना चास बाबत ते परामर्श फसल रे बाजार दर ओना साथ एग्रीकल्चर रे विभिन्न स्कीम रे अपडेट और हिजुक कन नवा नवा स्कीम ओना फोन माध्यम ते अडी उसरा बड़ा जमुआ विशेष कायते चास बास नी संताली ते ऑडियो विजुअल विषय वस्तु एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को थुती गालमारा विभिन्न लोकल टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन से तथ्य मोबाइल तलाते बड़ा जमुआ अब संताल आतु करे संताल चाषी मेना को जहाँ दो नवा टेक्नोलॉजी साव अपडेट बनू को उनकान क्षेत्र दो आतु रेन जुवान को अडी मारांग भूमिका से एनएम मेना ताकवा जेलेका आधुनिक कृषि यंत्र व्यवहार जुवान को माध्यम दे चाषी ठेन सेन दाड़िया डिजिटल मार्केटिंग ओका लेकाते हुआ चास कुन आर्जावकन फसल रिया सठिक दाम जाम लगे बाजार सिस्टम से डिजिटल मार्केटिंग दो अडी लगतियाना टोटकी चास आर्जाव लटू बाजार रे आक्रिंग से बाजार सा जोगाजोग लगे आयमा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम ते सूर सगिन बाजार रे अपडेट जामुआ नोआ छाटा हो ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन ऑर्डर आरो आयमा लेकना कमी डिजिटल माध्यम ते कराव गानोआ नोआ सिस्टम रे सांताल जुवन को डिजिटल मार्केटिंग पैकेजिंग ब्रांडिंग रेना ट्रेनिंग एमा को लेखान कृषि उद्योक्ता लेखाते को आत्मनिर्भर दाड़िया फूड प्रोसेसिंग माध्यम ते डेवलप चास खन आर्जाव नाम आकान फलन बेरेल अवस्था रे अक्रिंग लेकान किछु क्षेत्र तुलनामूलक कम दाम जामुआ ओनाते बेरेल ते बांग अक्रिंग कते प्रोसेसिंग माध्यम ते पैकेट आर ब्रांडिंग कते बाजार रे अक्रिंग लेकान भागे दाम जामुआ सांताल जुवन को आर चासी को कृषक समवाय रे सेलर माध्यम ते कम दाम ते आयमा फसल रे इत सार साथे आरो एमान ते चास कमी रे लगा कृषि यंत्र अडी सहज ते हाथाव गानोआ आर आर्जावकान फसल उपयुक्त दाम ते उनको ठन अक्रिंग गानोआ नोआ को पंथा हाथाव लेकान अब सांताल चाषी को हापेन दिन रे चासबास रे डेवलप को कराव दाड़िया।

0: সেতারে। প্রথমে রাগ কৌশিকানারা, তারপর মিস্টার ভৈরবীধুন শুনলেন শিল্পী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তবলায় সহযোগিতা করেছেন রূপক মিত্র। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হল। আকাশবাণী কলকাতা, এখন খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সর ফিরোজি। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने प्रशासन में मराठी को प्रमुख स्थान दिया और भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का समृद्ध भंडार तैयार किया, जो हिंदवी स्वराज के दौर में शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बना। हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए श्री शाह ने कहा कि दोनों पर्वों का एक ही दिन पड़ना मणि कांचन योग है। कार्यक्रम में हिंदी शब्द संसाधन, टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। साथ ही राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए तथा वंदे मातरम सहित कई पुस्तकों का विमोचन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 3 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो में यह खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
4: BRICS Summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts with very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
3: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS Summit in New Delhi. The two-day summit, held in the national capital under India's chairmanship, concluded on Sunday. BRICS comprises 11 major emerging economies, representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping.